संभालो ओ मरी मैया, आज इथे सारेच पेंद्या आणि कन्हैया। हे लूट ही लेंगे माखन की कगरिया, आज बच न पाए कोई राह डगरिया।